0: और सबसे पहले जो सलाम आया है वो शबीर अहमद फ्रॉम लंदन, आपने सभी को सलाम पेश किया है, शुभकामनाएं. और सना नेक्स्ट, एवरी प्रॉब्लम कैरीज द सीड ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी. और चिराग पटेल गुड मॉर्निंग का कहते हैं, सुन रहे हैं. अमीर अली राणा कहते हैं, पहले तो विशिंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग, कैसे करूं चांद से तेरा तेरा तुलना होना चाहिए, कैसे करूं चांद से तेरा तुलना, मतलब कि कंपेयर कैसे करूं, तेरी मुस्कुराहट के आगे वो भी फीका है, लगता है तारों ने चमकना तुझी से सीखा है, तू चाहे कुछ मत बोल, तेरी मौजूदगी ही काफी है, एक बार दिल में जगह तो दे, बस अब वही रहना बाकी है. ओके. किसे लगता है किसी टीनेजर ने कभी ना कभी ये लिखा होगा. रंजन विनोद फ्रॉम लंदन कहती हैं, टू ऑल माय गुड फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. मनर पटेल अमृत होम्स में है, हेलो गोइंग टू जर्मनी नाउ. इन्होंने मुझे कहा था कि ये रहेंगे जाएंगे पेरिस, पर लगता है वहां से होकर वो कुछ और.
1: हेलो नमस्कार, मनर पटेल नेदरलैंड, नाउ वी आर गोइंग फॉर जर्मनी होल्डे, आई नॉट मे बी गेट वाईफाई बट दिस इज जस्ट इन्फॉर्म टू ईस्ट एफएम लिसनर्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे. मनर पटेल फ्रॉम नेदरलैंड, थैंक यू.
0: क्या बात है, कहते हैं कि देखो एक दिन के लिए मैं जर्मनी जाऊंगा, मुझे नहीं पता वहां वाईफाई का क्या हाल होगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूं मैं जिंदा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं और सफर पे निकला हूं. मनहर पटेल याद रखते हैं ईस्ट एफएम को जहां भी जाएं. ओके. एम एल विश्वकर्मा साहब, वॉक अवे फ्रॉम पीपल हु पुट यू डाउन, वॉक अवे फ्रॉम फाइट्स दैट कैन नेवर बी रिजॉल्व, walk away from trying to please people who will never see your worth. The more you walk away from things that poison your soul, the happier will you be. अच्छा समझ ना, ऐसी बातें अच्छी हैं, प्यारी हैं, कुछ थोड़ी ग्रामेटिकल एरर्स भी हो जाएं वो हम हटा देते हैं, पर ये कितना अच्छा कहा है उसने कि निकलना हटना सीखो, चलो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आप में जहर घोलते हैं आपकी राहों में. एमएल विश्वकर्मा थैंक यू. अच्छा जो शमीम कहती हैं कि कौन से शहर अंडर थ्रेट हैं, जिनको खतरा है,

0: Mumbai and Kolkata might soon submerge underwater. UN warns India as sea levels are rising. जी हाँ, दुनिया के हर शहर समय जो समंदर के किनारे पर इस तरह से तो सभी डूबेंगे, लेकिन उन्होंने मुंबई और कोलकाता का खास जिक्र किया है यूनाइटेड नेशंस. ओके, अब देखते हैं कि प्यार अली भाटिया ने क्या कहना है.
1: जी, ढल गया दिन, ये गाना फिल्म हम झोली का है, जिसको आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया है, और जिसको आनंद बख्शी ने लिखा है, और जिसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने बनाई है. गाना अच्छा लगा सुनाने.
0: बहुत खूब, आपको पसंद आया, यही हम चाहते हैं. अब देखते हैं कि सलमा.
2: दोस्ती, दोस्ती क्या है, दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं हम हर किसी पर फिदा नहीं होते, प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते. शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा अहमद किसुमो.
0: दोस्त कभी नहीं बेवफा होते, बेवफाई तो कूट कूट के भरी है इंसानों में, कहते हैं जानवर बेवफा नहीं होता. ओके, चिराग पटेल ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भेजी है, और क्या कहा है आपने वो थोड़ी देर के बाद मैं पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन इनकी खबर से पहले मैं आपको अपनी भी दे दूंगी.

0: और चिराग पटेल ने भी खबर देनी है, चलो मैं उनकी पहले पढ़ देती हूँ फिर मेरी इसी के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं चिराग पटेल के, नितेश राणा सपोर्ट्स टू बैन मुस्लिम्स फ्रॉम नवरात्रि गरबा एंड डांडिया इवेंट्स। जी हाँ, समय भारत में कहा गया है कि मुसलमान ना आए डांडिया और गरबा देखने के लिए। He said attendees should undergo ID checks and recite the Hanuman Chalisa before being allowed to enter. अगर कहीं पर डांडिया रास का इवेंट हो रहा है तो अगर कोई मुसलमान चला जाता है वहाँ, उसकी आईडी चेक की जाएगी, उसको नहीं दी जाएगी इजाज़त, तो उसको कहा जाएगा कि हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाएं, वरना आप दाखिल नहीं हो सकते। Those who don't follow idol worship, मूर्ति पूजा नहीं करते, they should not be allowed to participate in a Hindu religious event. ये चिराग पटेल ने कहा है, पर मुझे नहीं पता कि चिराग पटेल बजाते खुद क्या समझते हैं, लेकिन उन्होंने भेजी है ये इंफॉर्मेशन शायद बहुत खुश होकर। There is also a call for checking आधार cards. आधार कार्ड जो है समझ, उसको भी चेक करना है कि कहीं ये मुसलमान तो नहीं है। अच्छा ओके, ये था पैगाम चिराग पटेल का। दूसरा मैं आपको सुनाऊंगी बाद में। चंद्रिका वासंत गोसाई सुन रही हैं रूपल, स्टिल इन ऑस्ट्रेलिया। वन लाइन कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ हो। जी जी, ये बड़ा अच्छा गीत है, रूपल के लिए शायद लगाना पड़े क्योंकि वो बहुत दूर हैं ऑस्ट्रेलिया में। ओके, एक डेडिकेशन करूंगी आपके लिए, ठीक है। अमीर अली राणा का पैगाम थोड़ी देर के बाद, पहले ब्रेक ले लें।
1: इट्स 10:22।
2: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
3: Shape your future at UniServe Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships, and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26 September from 10 a.m. Entry free. UniServe Education. Master your own destiny.
4: Nairobi Sports House brings you magnificent range of Shogun fireworks to light up your Diwali. Get your Shogun fireworks and gifts from one-stop Diwali shop at Ram Mandir, Banderi Road, Parklands, also Sri Icon 3rd Parklands, Sri Gurdwara Ramgarhia Railway South Sea, Nairobi Sports House, Mombasa branches, City Mall, Niali, Faza and Likoni Mall.
5: Back to Kenya's premier Asian Mix, East FM.
6: East FM, Kenya's premier Asian mix.
7: Are, are, are, na, na, na, na, na, na.

0: अच्छा मिस्टर एमएल विश्वकर्मा, आपकी फरमाइश आगे आ रही है, मुझे लगता है कि मैंने रखा है ये गजल उनकी आशा की। ओके, लेकिन समन अभी कॉल आई है लंदन से कृष्ण सरोय की, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको कैसा लगता है ये बैन कि मुसलमान डांडिया रास और ये नवरात्रि पर मत आए। तो उन्होंने कहा है बड़े दुख की बात है, कहते कि इससे ना ज़्यादा ना इंसाफी नहीं हो सकती। कहते मुसलमानों ने भारत में हमेशा हिंदू त्यौहारों में शिरकत की है, दशहरे में वो आते हैं, दिवाली वो मनाते हैं, हर त्यौहार में मुसलमान अगर आए तो हामनी इस मुल्क में कितनी ज़रूरत है, मल्टीकल्चरल है तो हामनी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप आइसोलेट नहीं कर सकते एक कम्युनिटी को। कृष्ण सरोय बहुत ब्रिलियंट आपके व्यू, और आरफा उंगाटा रुंगाई आपने भी कहा है कि हमने तो उम्र गुजारी है मुसलमानों ने हिंदुओं के त्यौहारों में शिरकत करके डांडिया जाकर खेला करते थे, वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू दिस फेस्टिवल, और गरबा करते थे, हमारे तो स्कूल में हमने गरबा के गाने गाए सुने, और जब भी कभी फंड रेजर होता था हम करते थे फंड रेजर इन स्कूल्स, तो गरबा का तो एक इवेंट होता था, खुद हम डांस करते थे। हम मुसलमान हैं, अगर हम इतना एंजॉय कर सकते हैं तो ये क्या बात हुई कि हम हमें रोका जाए। ठीक है, अब जो मैं देने वाली थी चिराग पटेल के बाद खबर, बागेश्वर धाम के जो मेरे ख्याल है पंडित हुए ना धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने मांग की है कि दुर्गा पूजा के दिनों में बंगाली लोग गोश्त ना खाएं। इन दिनों हुकूमत से मांग की है उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने कि बैन लगाया जाए गोश्त पर, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल में सदर हैं प्रेसिडेंट बीजेपी के, वो हैं जवान लीडर समिक भट्टाचार्य, उन्होंने करारा जवाब दिया है शास्त्री को कि कोई अधिकार नहीं है आपको कि आप शहरियों के खाने पर पाबंदी लगा दें कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि शास्त्री किस दुनिया से आए हैं, विवेकानंदा ने तो इजाजत दे रखी है बंगालियों को मछली और गोश्त खाने की, ये कहा है समिक भट्टाचार्य। तो समझ, ये जो बात भट्टाचार्य की है ये बताती है कि आती नस्ल के लिए क्या अहम है और क्या नहीं है, वो इस तरह के बंटवारे और तकसीम में नहीं मानते, वो हिंदू मुस्लिम का तो ये मुद्दा भी नहीं उठाएंगे जवान नस्ल। सो आज जो कर रहे हैं बुजुर्ग अपना वक्त भी वेस्ट कर रहे हैं।
1: East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: आपको भी याद है कि डांडिया रास में आप जाया करती थी गरबा में नवरात्रि में. आरफा फ्रॉम मुंगाटा रुंगाई, वो कहती हैं कि आप जानती हैं कि नेबर्स कितने अच्छे होते थे, मुसलमानों के हिंदू नेबर्स या हिंदुओं के मुस्लिम नेबर्स. तो कहते हैं कि ये जो डांडिया का नवरात्रि का त्यौहार आता था ना, तो यंग लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे को कहते कि जाओ मुझे इस लड़की से बात करनी है, उसको कहो कि आए डांडिया रास के लिए, गरबा के लिए. और कहते हैं फिर वो आते, हमारी माओ से इजाज़त लेते कि प्लीज़ ये हो रहा है त्यौहार तो आने दो बेटी को. वो जाने देती थी, 11 बजे के बाद घर वापस आ जाना है. तो कहती कि ऐसी यादें हैं हमारी, कैसे कर सकते हैं आप इनको जुदा. बहुत सही कहा आपने कि ये एक मिलने का तरीका भी होता था, वहाँ लड़के भी आते थे लड़कियाँ भी आती थी. ओके, और अब देखते हैं कि किसुमु से पूर्णिमा है, पूर्णिमा शाह. आपने कहा है पर्युषण इज़ द मोस्ट सेक्रेट एंड इम्पॉर्टेंट एनुअल फेस्टिवल इन जैनिज्म. जी हाँ, जैनिज्म में ये बहुत अहमियत रखता है पर्युषण का त्यौहार. तो इट्स डेडिकेटेड टू इंटेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन, समय अंदर आपने झांकना है और अपनी खामियों को दूर करना है. स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, आत्मिक जो आपको मिलती है पाकीज़गी, एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आपने अपने आप को बदलना है. तो पर्युषण के दिन मैं आपको कहती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ सुना दे स्तवन. आगे मैं आपको सुनाऊँगी थोड़ी देर में.
1: East FM.
2: Celebrating your favorite occasion. East FM.
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
1: Asian mix.
2: East FM.
1: East FM.
2: These top jobs are waiting for you. On myjobsinkenya.com.
3: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit head of exports. Bachelor's degree in international trade, agribusiness, supply chain, business management or a related field, certification in export management or international trade law, and a minimum 10 years of progressive experience in export operations with at least 5 years in a senior leadership role is required. A master's in any field is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply. Our client is looking for a hands-on operations and sales executive. Diploma in business, sales and marketing, supply chain or a related field, 2 to 3 years of experience in sales, operations or FMCG, and is based in or willing to relocate to Kitale, with regular travel to other towns for supplier and customer visits is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
2: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. MyJobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews. Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
1: East FM.
2: East FM.
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: तो अश्विन, क्या ये खयाम का म्यूजिक है?
1: हाँ, खयाम का म्यूजिक, और शारिया ने लिखा था. शारिया, देन आई फाउंड आउट प्रवीण जी, ही वाज ए प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा था.
0: वहाँ के प्रोफेसर थे शारिया.
1: प्रोफेसर थे, और दो तीन फिल्म में उन्हें उसको उन्हें गीत लिखे थे.
0: ओहो, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन.
1: ही वाज ए उर्दू का बड़े स्टूडेंट थे.
0: अच्छा,
1: यस. और रेखा ने सिनेमा पर्दे पर दहल कर दिया
0: अपनी एक्टिंग के साथ. कहां इसने इतने जौहर दिखा दिए अचानक रेखा ने.
1: और परजी, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू आशा भोसले एज वेल.
0: ओह यस, लुक एट
1: हर. वे कितने हाउ ब्यूटीफुली शी सेज संग. यादगार बन गया.
0: और ये आशा कुछ भी गा सकती थी.
1: Yes, she was versatile. वो बोलते हैं ना, versatile singer. प्रवीण जी,
0: इतनी versatile.
1: Yes, आप बोलेंगे भजन तो भजन, और night club का गाना तो night club का है.
0: कमाल करती थी.
1: इनके पर थे तो she was talented. और ओपी नायर ने थोड़ा सा उनको डेवलप किया.
0: राइट, बिल्कुल. ओपी नायर ना होते तो आई एम टेलिंग यू लता ने प्रिपेयर करके इसका काफी रिड्यूस कर देना था इसकी पॉपुलैरिटी को.
1: यस, या ओपी नायर, यू मस्ट थैंक ओपी नायर.
0: राइट, एब्सोल्युटली
1: क्रिएटिंग अनदर आशा.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात है.
1: थैंक यू प्रवीण जी.
0: थैंक यू अश्विन. और अब चलते हैं टुडे इन हिस्ट्री, और वो भेजा है आपको यासर ने लाइक एवरीडे. कहते हैं इन 1664 डच कॉलोनी ऑफ न्यू एम्स्टरडैम सरेंडर टू द ब्रिटिश फ्लीट विच सून रीनेम्ड इट न्यूयॉर्क. न्यू एम्स्टरडैम था एंड दे सरेंडर टू द ब्रिटिश फ्लीट विच नेम्ड इट न्यूयॉर्क 1664. 1960, Firoz Gandhi, prominent freedom fighter, journalist and parliamentarian, passed away in Delhi at the age of 47, 4 days before his 48th birthday. He was his husband to Indira Gandhi, Firoz Gandhi. 1960, aaj ke din duniya chhod gaye. Aur aaj birth of a legend, Asha Bhosle. Born in Sangli, Maharashtra, she went on to record over 12,000 songs across multiple languages, earning a Guinness World Record as one of the most prolific voices in music history. Samin, ab tak to inko koi nahi chhu paya. Na jaane kab koi hogi jo inke by a mile inke paas aaye. Ab KK ne kaha hai, most beautiful ghazal Smita Patil. In a different avatar song, ये कोई और की बात कर रहे हैं. ये तो रेखा ने गाया था इन आंखों की मस्ती के. और समझ, जेन्स तवन की फरमाइश हुई है.

0: परवीन बट आपकी फरमाइश पूरी कर ली और कृष्ण सरोवर ने कॉल किया और कहा जब आपने सुनाया अभी ना जाओ छोड़ के आपने ये नहीं बताया कि ये साहिर लुधियानवी के कलम से निकले थे अल्फाज। जी हाँ साहिर लुधियानवी जैसा कोई शायर होगा नहीं। कृष्ण आपने कहा कि एस टी बर्मन की धुन थी, कहते अभी ना जाओ छोड़कर वो वहाँ पर ही लिख रहे थे और सामने बैठे एस टी बर्मन धुन भी बना रहे थे उसी वक्त। कमाल है। और समन यहाँ इनका कलम चलता और वहाँ वो सुरों से सजा देते एस टी बर्मन, दोनों टैलेंटेड, ह्यूजली टैलेंटेड। अब भास्कर पटेल फ्रॉम मैनचेस्टर आप सबको शुभकामनाएं भेजी हैं और इंडिया से बिंदु जयपुर आपने कहा सभी को नमस्कार, आज एक पल भी मिस नहीं हो सकता, आपने जो बेहतरीन गाने आशा भोसले के सुनाए वो मेरी फेवरेट सिंगर है और सभी गाने बेहतरीन हैं। 36 का आंकड़ा, अच्छा बिंदु मुझे बताएं 36 का आंकड़ा क्यों 36 ही है, कोई वजह होगी कि 36 है। ठीक है चिराग पटेल आपने कहा अदावत होना, वो इट जस्ट से इसका मतलब अदावत दुश्मनी, लेकिन मैंने कहा ना गहरी इतनी दुश्मनी के अल्लाह बचाए वो कहना है आपने। फिर आपने दिया है सांप नेवले का बैर, जी बिल्कुल करेक्ट सांप नेवले का बैर है इनमें। ओके और यहाँ है
1: हेलो प्रियं जी गुड मॉर्निंग मिसेस अंजल हियर, प्रियं जी आपके मुहावरे का मतलब है इट कुत्ते दा बैर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
0: हाँ मिसेस धंजल मेरे दिमाग में आया था क्योंकि ये पंजाबी का है इट कुत्ते, जमीन ईंट और कुत्ते का जो बैर होता है क्योंकि लोग ईंट से मारते हैं कुत्ते को, तो जो बहुत गहरी दुश्मनी हो तो इट कुत्ते दा बैर हम पंजाबी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू मिसेस धंजल। और ये कहा है आपने खतीजा, खतीजा आपने कहा है कि पक्के दुश्मन, मैंने पक्के दोस्त सुना हुआ है लेकिन पक्के दुश्मनी, लेकिन जानी दुश्मन, यस जानी दुश्मन। ओके सोनल मोदा हैप्पी ट्यूसडे, और कट्टर दुश्मनी है और 36 का आंकड़ा है। अच्छा ये 36 का मतलब कुछ होगा, बताएंगे आप खुद बताएंगे कि क्या है 36 क्यों।
2: वालेकुम परिन जी आप ठीक हो। परिन जी ये गाना मेरे अबू को बहुत बहुत बहुत पसंद था। परिन जी थैंक यू सो मच, आपने ये गाना लगाकर मेरे अबू की याद आ गई। मेरे अबू हमेशा ये गाना शौक से गाते थे परिन जी, इतना उनको शौक था, मम्मी के सामने बोलते थे ना ये गाना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।
0: और हुस्ना के वालिद शाम तंजानिया में रहते थे, वहां से मुझे कॉल किया करते थे। कितने साल आपने बेमिसाल अंदाज सुना और कंट्रीब्यूट किया, कासम कारा थे वो, अब दुनिया में नहीं रहे, खुदा उनको जन्नत दे। और यासर ने एक फिल्म के बारे में जिक्र किया थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले आशा रफी।

0: This is Retro to Right Now with Nilufar on East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Spot the Bakwas.
2: On East FM, Kenya's premier Asian mix.
0: बकवास तो हम करते हैं और करते रहेंगे करते चले जाएंगे ओके सो थ्री स्टेटमेंट्स यू टेल मी व्हिच वन इज ट्रू व्हिच वन इज बकवास ओके देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ बॉडी दैट कांट हील देमसेल्व्स देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कांट हील देमसेल्व्स इज दैट ट्रू और बकवास सेकेंड वन There are five different blood groups. There are five different blood groups. Is that true or bakwas? And the third statement, Thomas Edison discovered gravity. Thomas Edison discovered gravity. Which one is true? Which one is bakwas? Give me a call 0711-046-106 or you can WhatsApp me on 0701-106-106. Abhi aap bologe, itni thandi mein dimag waise bhi freeze ho gaya hai. Ye science leke baith gayi. Haan. अभी आपका ट्यूशन का टाइम है थोड़ी पढ़ाई करेंगे दिमाग चलाओ और मुझे बताओ विच वन इज ट्रू विच वन इज बकवास